0: वरना पक्षी पर बारिश उग्रम अन्ना जड़ा गुड़ी साग सब्जी फल फूल सहित उक्त स्वरूप खानाले पक्षलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ र खाना सँगसँगै बिम्ब सम्म यसमा पानी चढेका छौँ।
1: एक पटक सेवा करने बहुत अवश्य धन्यवाद।

प्रतिबंधन नगर का आयोजन लाइसेंस प्रदर्शनी दिवाली समिति संशोधन करी समस्त प्रक्षेत्र को कानून संशोधन करने प्रस्ताव सात अरब डॉलर से प्रमाणीकरण अनिवार्य अमेरिका ईरान बीच सूचना पहले चरण को वार्ता शुरू ईरान

लाइसेंस प्रक्रिया साथ ही भारत का राष्ट्रीय प्रमाणीकरण अनिवार्य लगातार

0: আসেনি, আমার মনে হয় মন্দ সন্দেহ।
1: सतर्कता अपनाउने गरौँ। रेडियो दुर्बल एफएम द्वारा जनहितमा जारी

राम राम बतके थारू वास गढ़ी नगर पलका ओकर गहूँ राम राम मम्मा थारू वास गढ़ी नगर पलका ओकर

0: मध्य वस्त्र में स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी के बद्धता घटी, व्यवहारिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में वृद्धि होगी। यहाँ कम को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल बताने से औषधि अस्पताल पास में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कर रही
1: अस्पताल से दिए जाने सेवा
0: 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए।
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच करेगा।
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी, हार्ट जोड़ने तथा जनरल सर्जरी, प्रसूति सेवा, नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे, वीडियो एक्सरे, ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा। सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध भा। पैरालाइसिस को मुंह बांध बिना नशा धाकुल हाथ द्वारा निचलना बिरामी

पछि स्वस्थ जीवन अपनाई निशा रोग झट्ट भरत ध्यानी गेमेर जीवन खत्म हुई सन्तुलित खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूमपान मदिरा मछली टुरा रही तथा मन नियन्त्रण करी आज निर्णय कार्य जीवन आचार

0: jau Guatemala utzartzi kautua likartatzi mazet, zantzaren pitika, amartzen desmaguri dari, mutunuk ezan zartaz eusak mazet, la lima puspako norma hila sorkari ikastatu baxi utzartu ha, ikitran dibasman agirba, bastari mazet paratari marma, ofin drama duim hila dientrema, Raza Purma Jurte Padata Nisret Isthaniye Tuchanye Utpadan Tope Dhamna Chor Bane Chantukar Raka Padil Khyara Shular Masi Pani Kade Vasta Shivanti Kret Samudai Ka Samaji Khinyai Ma Pradish Sarkar Pati Bajar Madi Dimashara Kakai Vakhi Hamadi Vrita Maana Pati Ka Aik Mawzuri Apura Samachar Bindu Se
1: वास्तवी नगर पालिका नौ वास्तवक में रजाकारी में पुस्तक और महिला बहुउद्देशी सहकारी संस्था आज अपन सत्रह वार्षिक उत्सव पूर्ण स्थायीकरण दिवस मनाई का एक रुपया बजट उठाकर महिला संघ बने की 2065 साल में स्थापना हुई संस्था अब 11 करोड़

0: dari upacit rumah. Upacit saku sangat cinta oleh jalan hari kamu berkapungan pasti pada paling aku tidak bertemu pada bahagian mereka. Pasti tidak berpaling atau sama kali senjata atau cie dia bisa datang isi. Raja Raja Kisna Kharu dan Jawa Kedaka Jai Ram Chaudhari Kharu Pandar Dhar Kedaka Nirdeshak Prithma Singh Kharu Lagarat Nirmirik Sam Samskar Upar Ampara Rati Niji Dutti Dibi Sarlakar Gurgar Patrakaro Kari Lika Parmatari Upar Santara Samedi Upar Sikara La Kari Kapa Swagat Mandabi Prasthar Kapa Vahata Che Sapana Devi Oli Karadhaji Karashe कार्यक्रमको अवसरमा संस्थामा सहयोगकर्मा सङ्घ संस्कृत तथा मनन नायक चिन्हानको प्रमाणपत्र देखिरह उसैको कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यक्रमको प्रमुख मुख्य प्रबन्धक जुना खड्का गरिरहेका छन्। कार्यक्रमको समापन शिवकुमारी संस्थाका अध्यक्ष शिवकुमारी सकुरा गरिरहे। नर्दियाका वार्षिकमा प्रहरी बडा परिमाण लागु सोच अखिमसँग दुई महिनाङ्कन पक्राउ गरेका करीब साढ़े चार बजे बासकारी नगर पालिका जी डॉक्टर बखारी चतुर्वती महापुर का महामन पकड़ कर रखो। इसकी सूचना का आधार में लागू अवसर नियंत्रण ब्यूरो शाखा कार्य नेपाल को जो विधायक प्राधिकारी ने मोदीपुर का संयुक्त टोली पहाड़ का पालिका चार बैठा 30 वर्षीय सचिना खर्च मगर और बासकारी नगर पालिका की बैठा 34 वर्षीय मीना लोकायत में पकड़ कर रखो। पालिका अनुसार चेक जांच का क्रम कार्ति मगर बकला 16 मीटर मुखा खतरनाक अवस्था में 340 ग्राम अफीम जैसे नेपाल अपराध में बरामद कई रकम पकड़ाव पर लंबी जांच जैसे 3 खान मोबाइल फोन और नगर 34,050 रुपया समेत थाना पड़ा परिचालन लगा पकड़ाव पर लंबी जांच का अनुसंधान तथा कानून कार्रवाई के लिए जिला का प्राधिकारी ने मोतीपुर बासकरी मठाई जिला जिला प्राधिकारी ने बर्दिया का प्रमुख प्रहरी निरीक्षक लोक प्रसाद वर्षीय जानकारी दिलवाद
1: बर्दियाका राजेपुर नगरपालिका चोर्पे पदार्थमा प्रतिबन्ध कति स्थानीय कृषि तथा पशुपन्य उत्पादन प्रवर्धनमा गर्न नीति अनुसारमा नगरपालिकाका दशौं नगर सभामा वार्षिक आर्थिक वर्ष 2083-84 लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयमा एउटा दिउँसो शिल्पीय पदार्थ प्रयोगमा प्राप्त गरिन प्रस्ताव पैसिरहेको मही दही व लसी जसी स्थानीय उत्पादन प्राथमिकता देन नीति नगर पालिका दिलगा नगर पालिका किसान मैत्री कार्यक्रम विशेष प्राथमिकता दिलगा दूध उत्पादन बजारीकरण का दूध शिक्षण केन्द्र संचालन में व्यवस्थित बनैना कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी व उत्पादन मुखी बनैना तथा दूध शिकार अंडा व मछली आत्मनिर्भरता बढ़ेना योजना आधा साधित प्रत्येक वड़ा संकलन केन्द्र को हाट बाजार स्थापना तथा कृषि एवं संचालन करना नीति के समाधिकारी खेती प्रबंधन में जोर देती कृषि उत्पादन स्थानीय स्तर में सशक्त होने नीति देखा नगर को प्रमुख मंडला कुमारी चौधरी प्रस्तुत करना नीति तथा कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार होना समेत प्राथमिकता देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 15 सैया का अस्पताल विस्तार करना सीतलशील एनीमिया और थैलेसीमिया का परीक्षण तथा निःशुल्क निर्वाह करना व्यवस्था करना नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख करेगा सर्वप्रथम सर मलेरिया डेंगू हाथी पाले स्ट्रोक टाइफस जसिन रोग का रोकथाम नियंत्रण और निर्वाह करना स्वास्थ्य सेवा विस्तार देखिएगा गाई सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत प्रसूति सेवा प्रभावकारी बनाए नगर क्षेत्र एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क करना नीति फेरी गिरता समग्रमा राजापुर नगर पालिका स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन स्वास्थ्य सेवा विस्तार हो कृषि आत्मनिर्भरता हमारा केन्द्र मकई का नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक करता वनतंत्र का लाभ करीब 11 सोलह सिस्टम से पीना पानी व्यवस्था देखेगा जिला का रात सुनाई गांव पालिका वार्ड नंबर 8 स्थित सर

धारा समाचार वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार पासी परिपत्र प्रस्तुत करने कार्यक्रम महरी होम का संस्थापक अध्यक्ष रविन्द्रनाथ ठाकुर स्वागत मंतव्य लगे कार्यक्रम का संचालन के प्रसारण प्रकाश गुप्ता खबर पठ आप राष्ट्रीय समाचार

0: से डीबी फुटेज को आगंतुक प्रतिक्रिया का नियंत्रण में रेखा अनुसंधान कल्पना प्राप्त बजरी में पद्म शांति शक्ति का दुरूपयोग करते मानसिक यातना दिन आरोप जिला मंत्री को संलग्न टोली पर फौजदारी मुद्दा चलाए तथा अनधिकृत प्रवेश कराए सभी कर्मचारी कर्मचारी पर विभागीय कार्यवाही कर समेत माफ।
1: सन्देश का समय उदय लगल बाप सन्देश पढ़ना से पहला मुख्य मुख्य सन्देश थे। राष्ट्रपति नगर पालिका

0: আসলে মায়ের কাছে সেই পলারি আফের কথা কথা কাছে বিবিসি কা বিবরণ আধারিত রিপোর্ট চরিত্র তার পাতা
1: ধর্মী শিক্ষা বলে সাইকিয়ার নিয়ে অল্প আলোচনার বা নির্ভর তলাই দিতে তো দিন আপু উপযুক্ত অবস্থানের মধ্যে কমন্ডে পথে একেবারে রাজা এই ছাঁকাই করে কথা কাছে उत्तराधिकारी बने छानिएको छ। सोमबार संसद पदको औपचारिक रूपमा शपथ ग्रहण गर्नु केही घण्टा अघि वर्मनले आफूले पार्टीको नेतृत्व दावी गर्ने बताएका थिए। तर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सेप्टेम्बरको प्रारम्भसम्म पुग्नु पर्ने हुन सक्छ। स्टारमरको शपथ भएपछि विपक्षी कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता केभी बेनरले लेबर पार्टीलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै ब्रिटेनले भोगिरहेका संवेदनशील मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आह्वान गरेकी छन्। उनले तत्कालीन सम्बोधन गरिनुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधनका लागि सहजै सत्ता हस्तान्तरण गरिनुपर्ने बताइन्। उनले तत्कालै आम चुनाव पर्ने माग गरेनन् जुन दक्षिणपन्थी युके रिफर्म पार्टीले गरिरहेको छ। सन् 2020 सर केयर लेबर पार्टीको नेता चुनिएका थिए र सन् 2024 उनको पार्टीले आम चुनावमा ठूलो जित हासिल गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर उनी इतिहासमै